0: सिन्हा ने राजू मुए राजू बसे प्रोफेसर राजू
1: एफएम नौ सिन्हा बुसे केनो राजू सने स्वादगी।